0: Baker Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Soothing you through the night and early morning. This is Leica Radio Midlands.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड Alexa प्ले लाइका गोल टू। Raj Patton drives Leicester home with Drive at 4 p.m. Laika.

हुकुम ना कहया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नान हुक्मे

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह

0: Like our radio.
1: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
2: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
1: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
2: Also explore 2026 cruises
1: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're Atoll Protected.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: Good morning. स्वागत है आप सबका। संगीत प्रेमियों को हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। दिस इज कॉल्ड मनोरंजन प्रोग्राम। अभी अभी स्टूडियो से निकली है काजल। वी शिल बी बैक टुमारो मॉर्निंग विद अनदर ब्रेकफास्ट शो। और अब मेरी बारी है। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मजे में हैं? आई नो दैट। और नहीं है तो भाई मजे में हो जाएंगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके होते हैं। ये सुख दुख धूप छाव इन सबको झेलते हुए, इनके साथ खेलते हुए आगे बढ़ेंगे, जिंदगी सुहाना सफर बन जाएगी। मंगलवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 21 तारीख हो गई आज। और वक्त हमारी आपकी मुलाकात का 10:05 हुए हैं। और साहब डायरी खुल गई है, शायरी मिल गई है और उसके साथ ही एक गीत जोड़ करके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। चंदा को मेरी बात मुनासिब नहीं लगी, तारे मेरे कहे का बुरा मान गए हैं। केवल जमीन के ही नहीं आसमान के भी जलते हैं तेरे रूप से हम जान गए हैं। हमने नजर नजर में उतारी तेरी नजर और दिल ही दिल में हम तेरे कुर्बान गए हैं। गुलशन में फूल फूल पे खाया तेरा फरेब, धोखे में तेरे हम तो गुलिस्तान गए हैं। तेरे धोखे में फूलों को देखा, कलियों को देखा और बहाने से अनजाने में तेरी सहेलियों को देखा। तू ही है हर फूल में जान।
1: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Are you listening? Like a Radio is now available across Wolverhampton on DAB.

0: गाना खत्म हो गया शर्मा जी, कहाँ देख रहे हो? मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें उभर कर आ रही हैं और आज के दिन की घटनाओं के चित्र दिखा रही हैं। लेकिन पहले बता दो भाई, बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दिए हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आए, उनके मैसेज भी स्क्रीन पर आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच हेना जी, वियाना वाले अनिल जी और भाई हमारी नैना शाह और देश राज मैसन साहब, रेगुलर लिसनर, रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर और बहुत प्यारे प्यारे श्रोता हैं आप। सलोमी पम्मी और रीटा जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो नाम नहीं लिखते हैं लेकिन चेहरा भाई देख करके पहचान जाते हैं कि आप वजाहत हाशमी साहब हैं। और भाई साहब सबको स्वागतम कहते हुए बता दूं कि 10:30 बजे आप सुनेंगे आज के खास खास समाचार और उसके बाद 11 बजे की खबरों के बाद होगा आज का विचार यानी चिंतन। और भाई आपकी मन भावन गीत तो पूरे कार्यक्रम में छाए रहेंगे। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं रवि शर्मा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तुम मिले प्यार से और हमें जीना गवारा हुआ। कौन मिल गया ऐसा? बोले 10 डाउनिंग स्ट्रीट को नया क्या कहते हैं वो रेजिडेंट मिल गया, ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल गया। और साहब 10 बरस में 7 प्रधानमंत्री, यहाँ भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि भाई प्राइम मिनिस्टर कोई भी अपनी अवधि जो है पूरी नहीं कर पाता है, उससे पहले पहले चेंज हो जाता है। 7th प्राइम मिनिस्टर इन 10 ईयर्स और भाई एंडी बनहम जो हैं वो घुसते ही ऐलान कर रहे हैं कि कुछ एक वो सख्त कदम उठाएंगे, कुछ एक पॉलिसीज में चेंज करके। खासकर वो कहते हैं रफ स्लीपिंग ब्रिटेन में, आपने देखा होगा सड़कों पर हमने देखा लोग सो रहे हैं भाई, कंबल अम्बल जुटा करके और कहीं पर छोटा सा कोना देख करके। ये ब्रिटेन की छवि जो है वो उजागर करते हैं। कल तक भाई तीसरी दुनिया के देश जिन्हें कहते थे और वहाँ की चित्र दिखा करके जो आलोचनाओं का शिकार बनाते थे, आज ब्रिटेन वैसी स्थिति में अगर जा रहा है तो प्रधानमंत्री को चिंतित कर रहा है, ये बात है। और बाकी बातें आप खबरों में सुनेंगे 10:30 बजे। फिलहाल तो लेट मी टेल यू हाउ द पाउंड इज परफॉर्मिंग अगेंस्ट इंडियन रूपी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं, रेट अच्छा चल रहा है, पैसे अपनों को क्यों नहीं भिजवा रहे हैं भारत में। आज 1 पाउंड के बदले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके दे रहे हैं 128 रुपए और 90 पैसे, यस 128.9 इंडियन रुपीज यू कैन गेट एंड यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। TNDC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 749. Leela Medium Atta 10 kg, just 399. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 149. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 399. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99. Per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollouts Hill, Leicester, LE54UN.
3: Lester Miller is back
4: and the stage is about to explode. Confirmed artist
3: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
4: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
3: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
4: Arts Council England. You know that clean, fresh feeling after brushing? Sidayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
5: Sidayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
4: Sidayu, Ayurved that fits your life.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: Khakra Crunch Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
8: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
7: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
9: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
10: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LikeAradio.com and selecting Midlands or the mobile app. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.
0: लीजिए साहब, गीत सुनाने से पहले डायरी का पन्ना खोलें। शिकायत है, लिखा है, वहां हरगिज न जाना था जहां पहुंचा दिया मुझको, नजर के एक इशारे ने कहां पहुंचा दिया मुझको। बड़ी उल्फत से मांगा था हसीना से पता घर का, जरा देखो तो शहरे दुश्मना पहुंचा दिया मुझको। ये धक्कम पील अब क्या खाक ले जाएगी और आगे, जहन्नुम में तो मेरे मेहरबान पहुंचा दिया मुझको।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a
3: अगर बेवफा तुझको पहचान जाती जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत ना करियो कोई। भाई ये बृहस्पतिवार वाला गीत आज मंगलवार को प्रोग्राम में शामिल हो गया, इसे हम अपनी बहन मिसेस शेख के नाम कर देते हैं, क्योंकि अक्सर उनकी शिकायत रहती है आप थर्सडे को दर्द भरे गीत ज्यादा नहीं लगाते। भाई ये दर्द तो कभी भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। इसकी चर्चा होगी आज चिंतन में कि दर्द और खुशियां साथ साथ चलते हैं, बारी बारी से मिलते हैं, बस जीवन इसी का नाम है। तो साहब ये गीत रफी साहब की आवाज में हमने आपको सुना, लेकिन रात के अंधेरे में फिल्म का ये गीत लता जी के स्वर में भी है, कभी वो भी सुनवाएंगे। फिलहाल तो आज के प्रमुख समाचारों की ओर जाएंगे। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि वो जो रफ स्लीपिंग कल्चर यहाँ डेवलप हो रही है उसे समाप्त करने में प्रायोरिटी देंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन ज्यादातर खबरें भाई हम भारत से कलेक्ट करते हैं या भारतीय उपमहाद्वीप से, सब कॉन्टिनेंट से लेते हैं। तो वहां से आने वाली खबरों में सिक्किम में एक सुरंग हादसा हुआ है, 8 डेड बॉडीज बरामद हुई है, 25 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर पर सख्ती देखी गई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की कई चीजों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। आइए विस्तार से देखते हैं खबरों को। पहले तो ये खबर के सोनम वांगचुक के नाम आप कई दिनों से सुन रहे हैं। भैया वो नौजवान नेता हैं जिन्होंने भूख हड़ताल करके स्टूडेंट्स के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। वो जो पेपर लीक हो जाने पर नुकसान हुआ बच्चों का, तो वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, न्याय मांग रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की इजाजत दे दी है। हालत बिगड़ रही थी, 21 दिन हो गए थे उन्हें भूख हड़ताल करते हुए। वांगचुक की ओर से उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने परसों संडे को दिल्ली हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। कांग्रेस नेता और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन ने सीजेपी प्रदर्शन में, कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन में शामिल छात्रों के साथ मारपीट के मामले में प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार स्टूडेंट्स के मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने से बच रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके संसद में स्टूडेंट्स के मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की है। सीजेपी के जख्मी प्रदर्शनकारियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के साथ जेपी नड्डा ने एक बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के विरोध मार्च के दौरान जख्मी हुए लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के साथ भी बातचीत मीटिंग की है। मानव अधिकार संगठन यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि भारत में शांतिपूर्ण विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ताकत का अनुचित इस्तेमाल किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर के बयान दिए हैं। लाठीचार्ज हुआ उन पर, भाई वहां से जंतर मंतर से उन्हें हटाया गया। भारत ने रूस के डिप्लोमेट्स को तलब किया और हमले में 4 भारतीयों की मौत पर एक स्टेटमेंट जारी की है। कार्गो शिप MV गोल्डन लियो पर हुए हमले में 4 हिंदुस्तानियों की मौत के मामले में भारत सरकार ने आज नई दिल्ली में रूसी एम्बेसी के प्रभारी को बुलाया, तलब किया। मिनिस्ट्री ने कहा कि इस तरह के हमले इंटरनेशनल समुद्री व्यापार की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और विश्वसनीयता भरोसे को कमजोर करते हैं। मॉनसून सेशन के दूसरे दिन आज एनडीए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने मंगल मिलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। बैठक के बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने मीडिया को प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस की जानकारी दी। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एक अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग में हुए हादसे के बाद 8 डेड बॉडीज अब तक बरामद कर ली गई हैं। ये सुरंग एनएचपीसी की तीस्ता जल बिजली परियोजना प्रोजेक्ट के छठे चरण का हिस्सा है। नामची की जिला डिप्टी कमिश्नर अनुपा तामलिंग ने हादसे में लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड विभाग की टीमें अभियान चला रही हैं। किसान महापंचायत से पहले दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर सख्ती। सरवण सिंह पंडेर का एक बयान आया है, किसान नेता है। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा बैरिकेड लगाए गए हैं और घग्गर नदी पर बने पुल पर सीमेंट के ब्लॉक भी रखे गए हैं। दिल्ली के किसान घाट पर देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले प्रस्तावित भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ एक दिन की किसान महापंचायत आज ऑर्गेनाइज की जा रही है। किसान नेताओं ने कहा था कि पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इस महापंचायत में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद सोनू सूद, भूमि पेडनेकर और रितेश देशमुख सहित कई फिल्मी हस्तियों ने उनके समर्थन में बयान दिए हैं। कल सोमवार को हुए संसद मार्च के बाद सिनेमा जगत से जुड़ी हुई कई हस्तियां इन प्रदर्शनकारियों की हिमायत में आ गई हैं। सोनू सूद ने एक्स पर लिखा कि हमारे छात्रों को लाठियां नहीं गले लगाने वाले हाथ चाहिए स्टूडेंट्स को। और एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि वॉयलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज हमने वॉयलेंस की तस्वीरें देखी, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारे देश के नौजवान इस आंदोलन में हिंसा का सहारा ना लें, वॉयलेंट ना हो, यह आंदोलन अपने रास्ते से ना भटके, डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत और संवाद पर आधारित जो है कैंपेन चलाएं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह खबरें अटकलों में हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। ट्रंप का बयान न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नेतन्याहू सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की महासभा में बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की संभावना पर उनका कार्यालय विचार कर रहा है, मेयर का दफ्तर विचार कर रहा है। इसके बाद ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बेन्यामिन नेतन्याहू को अमेरिका में रहते हुए किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा है भाई, दिल्ली से ये वार्निंग दी गई है कि आज सुबह से बारिश हो रही है वहां दिल्ली में, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है, यह भविष्यवाणी की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाले कई तरह के सामान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। बल ये थे आज के प्रमुख समाचार, समाचार समाप्त होते हैं।
0: ये है लाइका रेडियो, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
3: सूचना और समाचारों की दुनिया से निकलकर अब फिर से संगीत के क्षेत्र में प्रवेश कीजिए, म्यूजिक का मजा लीजिए। सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की सदाबहार आवाज़ें।
4: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: है
1: लाइका रेडियो.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: कारवां फिल्म का गीत सुनवाते हुए हम आ गए हैं भाई इस दौर में कि आपको लेमफाई के रेट्स बताने जा रहे हैं. एक पाउंड के बदले इस समय दे आर गिविंग 129.25 इंडियन रुपीस. पाकिस्तानी रुपए पाउंड के बदले वो दे रहे हैं 373.7. श्रीलंकन रुपए 452.2. बांग्लादेशी टके 165.84 एंड अफगानी 89.91.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
0: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: LIKA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is... Leica Radio.
3: गोल्ड सोने का भाव इस समय चल रहा है 97.46 पाउंड्स पर ग्राम.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
4: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. संडे 27th of September, डी मॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर. डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट 7 PM. टिकट्स बुक करें demontforthall.co.uk
5: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116 332 0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 0786028 0655. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
7: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
8: इन real estate, location is everything and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Start to-

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. Ravi Sharma on Laika Radio.
1: और आइए देखते हैं ये गीत हमें पहुंचाता है खबरों तक। 11 बजे के समाचारों के उस पार होगा आज का विचार यानी चिंतन। बने रहिएगा हमारे साथ, दोपहर बाद 1 बजे तक मनोरंजन कार्यक्रम आप रवि शर्मा के साथ सुन रहे हैं।
2: रवि शर्मा ऑन योर

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में, दूसरे भाग में। माय नेम इज रवि शर्मा और बहन भाइयों, ये प्रोग्राम लेकर मैं दोपहर बाद एक बजे तक यहां स्टूडियो में हूं। उसके बाद बाली ब्रह्म भट्ट आपके मेजबान होंगे। ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हो गए हैं। वक्त है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और भाई आज का विचार हम अपनी आसपास की घटनाओं से लेकर के जुटाते हैं, हमारे साथी हमारे मित्र हम तक जानकारी पहुंचाते हैं, उन्हीं से चिंतन बन जाते हैं। एक घटना बल्कि दुर्घटना कहिए,

से जिसने झकझोर के रख दिया है समाज को, देश को, लोगों को, और हम उससे धारणा बना लेते हैं कि कलयुग का दौर है, ऐसे हादसे, ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं, ऐसी बुरी घटनाएं लोग अंजाम देते रहते हैं, अपराध करते हैं। कितना बुरा जमाना आ गया है, लोग कितने खराब हो गए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब कभी कोई बुराई जन्म लेती है तो उसके साथ टकराने के लिए इंसानियत भी सामने आती है, और दुख की घड़ी में जीत इंसानियत की होती है। कुछ एक घटनाएं नहीं, कई बातें ऐसी होती हैं हमारे आसपास जो हमारी धारणा बनाने में अपना रोल अदा करती हैं। पिछले दिनों एक घटना घटी, दुर्घटना, एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को इस घटना ने झकझोर दिया। यहां ब्रिटेन में, लंदन में, साउथ हॉल में एक यंग लड़की की हत्या कर दी गई, किरणदीप कौर, 24 साल की लड़की। अब इसके बारे में आज के चिंतन में हम जो आलेख शामिल कर रहे हैं, बलविंदर कौर जी ने साउथ हॉल से और उनके पति जसकरण सिंह ने यह जानकारी भिजवाई और कहते हैं कि सावधान रहने की आवश्यकता तो है, लेकिन इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि भाई सारा देश ही या सारा जगत ही, सारा संसार ही बहुत बुरा हो गया है। बुराई के साथ साथ अच्छाई भी अपना रोल अदा करती है। कैसे? बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी कारण के किरणदीप कौर साउथ हॉल में अपने घर सो रही थी, साथ में उसका बच्चा भी था, यहां पढ़ने आई थी, 24 साल की उम्र उसकी, और बिना कारण ही एक अपराधी उनके घर में घुसा और चाकुओं से इतने वार किए उस लड़की पर कि उसकी डेथ हो गई। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां आते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके माँ बाप जमीनें बेचकर कर्जे उठा करके उन्हें भेजते हैं, और वह यहां आकर के कामयाब होने की कोशिश करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, छुटपुट काम मिल जाए तो वो भी करते हैं। ज्यादातर बच्चे बड़े मेहनती और बड़े यूं कि स्वावलंबी होते हैं। किरणदीप भी ऐसे ही आई थी, लेकिन उस क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ट्रेजिकली शी वॉज स्टैब्ड, अनप्रोवोक्ड अटैक हुआ उनके ऊपर। इस संदर्भ में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कानून अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन वो परिवार, पंजाब में उसके माता पिता और उसका बच्चा, उसका पति भी जख्मी हुआ, क्या सोचेंगे आप? इस देश में क्या हम सुरक्षित नहीं हैं? क्या इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे विश्वास को डिगा देंगे कि हम अच्छे लोगों के बीच भी रह रहे हैं? बुराई कलयुग में है, लेकिन इससे टकराने के लिए अच्छाई भी है। जानकारी मिली हमें गुरमेल सिंह मल्ही जी, जो गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट हैं, परिवार की सहायता के लिए एक फंड स्थापित किया गया, लोग मदद के लिए आगे आए। और आपको बताएं कि भाई किरणदीप के लिए, उसके जख्मी परिवार के लिए डोनेशंस के रूप में लोगों ने दिल खोल करके फंडिंग की। अटैक करने वाले अगर दुनिया में हैं, अपराध करने वाले अपराधी हैं, तो मदद करने वालों की भी कमी नहीं। अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे हैं, पर वो अगर अच्छों के मुकाबले आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं। मैं देख रहा हूं केरीहाल नाम के एक व्यक्ति ने 5,000 पाउंड डोनेट किए, और उसके बाद 200, 500, 50, 20, 1 पाउंड से लेकर के भाई हजारों पाउंड तक
मदद के लिए आगे आए। मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ बुराई ही बुराई नहीं है, बड़ी संवेदनशील लोग भी हैं। किरणदीप कौर की नृशंस हत्या हुई, बहुत बुरा हुआ, एक दर्दनाक घटना है। एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी जिसके जीवन के अनेक सपने अभी पूरे नहीं हुए थे, वो अचानक इस दुनिया से विदा हो गए। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा उस परिवार को होती है जो अपने प्रियजन को खो देता है। लेकिन इस दुखद घटना के बीच प्रेरणा की यह तस्वीर सामने आई है कि ब्रिटेन में रहने वाले न सिर्फ इंडियन कम्युनिटी के लोग, दूसरे लोगों ने भी डोनेशंस भेजे। अनेक अनजान व्यक्तियों ने परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने आर्थिक सहयोग दिया, फाइनेंशियल हेल्प, तो किसी ने सांत्वना के शब्द कहे, तो किसी ने अंतिम संस्कार और पार्थिव शरीर को भारत पहुंचाने के इंतजाम में कॉपरेट किया। यही तो मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। जाति, धर्म, भाषा या देश नहीं देखता है दुख। जब दुख का पहाड़ टूटता है तो हमें याद आती है अपने गुरुओं की, अपने प्रभु की। प्रभु सबके कष्ट दूर कर, ऐसा हादसा किसी के साथ किसी भी परिवार में ना हो। आपका दयापूर्ण, आपकी दयालुता का हाथ सब पर रहे। तेरे पाणे सर्वत दपला, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।

0: नानक नाम चढ़ दी कला तेरे पाने सरबत न पला। किरण दीप के भाई इस हादसे को लेकर के बहुत सारे लोग अपसेट हुए, दुखी हुए, लेकिन ये जानकर भी तसल्ली मिली कि लोग मदद के लिए आगे आए और उस 24 साल लड़की जिसकी हत्या कर दी गई, वाहेगुरु उन्होंने पुण्यात्मा ने अपने चरणाच स्थान देन। इन प्रार्थनाओं के साथ भाई बहुत सारे लोगों ने पता चला, विशेषकर गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट मल्ली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इनिशिएटिव के लिए। आपके परिवार में भी ऐसी दुर्घटना का भाई संदेश मिला है, आप बहुत बहुत मैं कहूँगा कि सेंसिटिव व्यक्ति हैं और एक अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं। गुरमीर सिंह मल्ली साहब, आपकी ओर से भी संदेश मिला। जसकरण सिंह ने और बलविंदर कौर जी ने ये जानकारी हम तक भिजवाई कि किरणदीप 24 साल पंजाब की ये बेटी, एक माँ, एक पत्नी और यंग स्टूडेंट 24 साल की जिसकी हत्या कर दी गई, ईश्वर परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। अपराधी गिरफ्तार हुआ है और भाई कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक समाज के रूप में, एक सामाजिक परिवार के रूप में हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है और आप निभा रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि लगभग 60,000 pounds रेज किए जा चुके हैं और लोग कर रहे हैं। कोशिश रहे कि इस तरह के हादसे हमारे आसपास ना हो, और कलयुग है, जब ऐसी कोई घटना घटती है तो हम मदद के लिए, सपोर्ट के लिए तैयार रहे। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, न समझू जगत में किसी को पराया, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो, मेरा सर झुके तो झुके तेरे आगे, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, मिले राह में जो कोई दीन दुखिया तो मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। आज का चिंतन, आज का विचार भाई, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने संदेश भेजे हैं और ये लिखते हैं कि हम बहुत दुखी हैं इस घटना से। आप बड़े क्या कहें भाई, दूसरे के दुख को जो आत्मसात करता है वो संत स्वरूप होता है। मुझे भी इमोशनल कर दिया बहुत सारे संदेशों जो स्क्रीन पर आए हैं, बहुत बहुत आभार। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद दिला रहे हैं, भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो रेट इस समय है 128.9 रुपीस। SBI UK दे रहे हैं 128.90 rupees फॉर 1 pound। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Leica Radio.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
5: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Ranjit. Rajwada.
7: Nazar se nazar.
6: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
12: मॉम ऑलवेज सेड, बेटा क्लोव एंड नीम कीप द माउथ हेल्थी। नाउ दैट सेम ट्रस्टेड विजडम कम्स फ्रॉम बैद्यनाथ, ओवर 100 इयर्स ऑफ आयुर्वेदिक लेगेसी इन सिद्धायु टूथ paste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Sidhayu, Ayurveda that fits your life.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: Punjab, the biggest tunes, non

शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर। भाई ये पुरानी फिल्म, जितेंद्र थे हीरो, राजश्री थी शायद हीरोइन, और ये गीत शायद राजश्री पर ही पिक्चराइज हुआ था।

0: जितेंद्र भाई उन दिनों यूं समझिए कि सुपरस्टार बनने की राह में कदम आगे बढ़ा रहे थे। यंग नौजवान आई थिंक दिस फिल्म वॉज ब्लैक एंड व्हाइट। 1967 में ये फिल्म मैंने दिल्ली के कुमार सिनेमा में देखी थी, छोटा सा स्क्रीन, बहुत बड़ा नहीं। और भाई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का आनंद लिया। अब ये चांदनी चौक में है कुमार सिनेमा और साहब फिल्म की कहानी बड़ी द्रवित करने वाली थी, तो गीत राम करे कहीं नैना ना उलझे शंकर जय किशन की बनाई धुन पर ये गीत आपने सुना लता जी की आवाज में। और अब क्या कुछ एक संदेश है और उसके बाद में, हाँ एक संदेश तो यही है कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ फिर से आ रहा है एट ओवो वेम्बली अरीना में संडे 27 सितंबर को। सब स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन इवेंट स्टार्ट्स एट 6:15 PM एंड रन्स अंटिल 9:30 PM। अपनी टिकटों का इंतजाम कर लीजिएगा साहब www.diwalistory.com से। लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड पार्टनर ऑफ दिस इवेंट।
1: Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

हमारे महबूब भी आए हैं, बहुत सारे। सुलोचना सेठी कह दिए मैं जुड़ी हुई हूँ आपके कार्यक्रम के साथ। ललित छत्री साहब, विजय मॉरिशस वाले, मानसी थैंक यू।

0: सूरज फिल्म का गीत रफी साहब की आवाज में, ये भी शंकर जयकिशन की बनाई धुन थी। और साहब कल राजेंद्र कुमार साहब का जन्मदिन था, बाली भाई ने काफी गीत सुनवाए उनकी फिल्मों के। ये गीत तो साहब अपने जमाने का, और मैं तो कहूंगा हर जमाने का सुपरहिट गीत रहा है।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
5: Leica Extra Podcast Update.
0: और भाई इस बार हमारे पॉडकास्ट में आप हमारे प्रेजेंटर्स का परिचय देख पाएंगे। वेल द टाइटल इज लाइका प्रेजेंटर्स टेकओवर। तो आपको बता दें कि ये अब इस समय उपलब्ध है, ये कौन सा है 25वां एपिसोड है। देखिए और प्रेजेंटर्स के बारे में जानिए, जानिए कैसे वो रेडियो इंडस्ट्री में एंटर होकर के कितना संघर्ष करके अपनी जगह बनाते हैं, और भाई फिर हर घर में उनका नाम और काम पहुंचता है। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
5: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Leica Radio.
0: Leica Radio. और भाई Leica Gold से हम बधाई शुभकामनाएं देना चाहते हैं कनिष्क नारायण को। कौन है भाई? ये भाई एंडी वनहम की नई कैबिनेट के सदस्य हैं, मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हें शामिल किया गया है। भाई ऐसे काम के लिए ऐसे ही नौजवानों को जो है शामिल किया जाता है, उन पर भरोसा किया जा सकता है। ही विल अटेंड द कैबिनेट एंड आपको बता दें साइंस और इस क्षेत्र का बिजनेस नॉलेज भी इनकी है, साइंस के बारे में भी वे विद्वान हैं और मूल रूप से भारत से हैं लेकिन पढ़े हैं और कढ़े हैं कहेंगे कार्डिफ में। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया बट रेज्ड इन कार्डिफ एंड नाउ ही हैज बीन इंक्लूडेड इन न्यू गवर्नमेंट्स कैबिनेट, मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कनिष्क नारायण बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039 6357 57. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.

0: है हीरो।
1: तो भाई हेमा जी जिन दिनों वो क्या कहें कि भाई हीरोइंस में टॉप पोजीशन पर थी, उन दिनों मैंने उन्हें स्टूडियो में कुछ रिकॉर्ड करवाया उनसे उनकी आवाज में, और भाई इतना करीब से उनको स्क्रिप्ट दे करके उनके साथ खड़े होकर माइक के साथ पास और कुछ मतलब कमर्शियल वर्ड्स रिकॉर्ड करवाए थे। लग रहा था सचमुच ड्रीम गर्ल है वो, साक्षात हो गई है स्टूडियो में। वो तस्वीरें कहीं हैं मेरे पास, हेमा जी की उस जमाने की तस्वीरें। शी इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक दिस वीक। आप उनकी बहुत सी फिल्मों के गीत सुन पाएंगे।
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
3: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट derivalley.net।
1: भाई कोई बहुत ही खूबसूरत छवि आपके सामने हो और आप आंखों ही आंखों में उस इमेज को अपने हृदय में उतार कर फिर एक कागज लेकर उस पर कविता करने लगते हैं या शायरी लिखने लगते हैं, संभव है। यस पॉसिबल है।

ना गुल के लिए फुर्सत ना खार देखते हैं, हम तो तुझी को हरदम दिलदार देखते हैं। देता नहीं तुम्हारे आने की खबर कोई, हम दिल की धड़कनों की रफ्तार देखते हैं।

तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सदा, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं।

What a song. देखिए सुरताल और दर्द की अभिव्यक्ति। मैं साथ साथ कुछ सूचना भी, एक तो रायका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स एट laikaradio.com।

0: दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। उदासियों को दूर करने के तरीके भी हमारे पास है। लाइका रेडियो इज एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th एंड 16th ऑफ ऑगस्ट एट एबे पार्क। ऑल्सो द ब्रेडफोर्ड सिटी मेला ऑन 1st एंड 2nd ऑगस्ट एट सिटी पार्क एंड सेंटिनरी स्क्वायर। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: हेलो, साउथऑल ट्रेवल भी याद दिला रहे हैं, बोले उदास क्यों हैं हमारे होते हुए, आप लीजिए आपको छुट्टियां गुजारने के लिए ठिकाना बताते हैं और अपनी ऑफर याद दिलाते हैं। साउथऑल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Yeah.
1: Leica Radio.

0: convenient bowl. Coca noodles. Quick and tasty noodles in 12 flavors. Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
1: और मनोरंजन के साथ साथ ये भाई जानकारी भी आपको दे दें कि आज जन्मदिन मनाने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। फिल्मी हस्तियों का जिक्र तो बाली भाई करते हैं और मुझे यकीन है आनंद बख्शी पर वो बहुत सारी जानकारी जुटा के लाएंगे, क्योंकि आनंद बख्शी आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। 21 जुलाई 1930 में रावलपिंडी में जन्मे थे वो। इसके अलावा भाई संग्राम सिंह एक हमारे हरियाणा के पहलवान हुए, प्रोफेशनल रेसलर, उनका आज जन्मदिन है। 1985 में आज के दिन रोहतक में मेरे शहर में जन्मे थे वो, तो भाई उन्हें हैप्पी बर्थडे, सुन रहे होंगे। तो आशीष चौधरी आज जन्मे थे गुवाहाटी में, और साहब कुछ और भी कलाकार, अमर सिंह चमकीला, ही वॉज बॉर्न इन 1960 टुडे। राजनीति में है कुछ लोग, जिनमें एक तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, He was born in Karnataka in 1942. और एक और राजनीतिज्ञ शंकर सिंह वघेला, गांधीनगर गुजरात में जन्मे थे 1940 में, आज ही के दिन। और कौन जन्मे थे, हाँ एक उमाशंकर जोशी, बहुत जाने माने प्रतिष्ठित कवि लेखक हैं गुजरात के भाई, वो भी आज ही के दिन जन्मे थे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू ऑल द पीपल हु बॉर्न टुडे, इंक्लूडिंग हमारे जो श्रोताओं में जिनका किसी का आज जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
1: भेजेंगे सेंड मनी, तो पहले रेट तो बताइए भाई। लेमफाई के रेट्स हैं, एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में इंडियन करेंसी में वो दे रहे हैं 129.06 रुपीस, पाकिस्तानी 372.61, श्रीलंकन रुपए 451.11, बांग्लादेशी टकास 165.39 एंड अफगानी 89.83.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: और भाई गोल्ड रेट बता दूं आपको, सोना इस समय बिक रहा है 97.46 पाउंड्स का एक ग्राम।
0: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278।
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।

0: Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: Leicester, tiyar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
2: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
2: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocenter.org.
3: This is Laika Radio, part of the Laika Radio Network.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: और लीजिए साहब, अब मनोरंजन को समेटने का समय हुआ जाता है। लेस्टर में हमें डॉक्टर हरीश भूटानी और डॉक्टर उषा भूटानी जी सुन रहे हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एक या दो गीत तो क्या, पूरा प्रोग्राम आपके नाम। थैंक यू सर। और भाई मानसी आपका भी धन्यवाद, प्रदीप सोलंकी ब्रैकनल में, सहर जी आपका भी धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत आभार। अंजलि सुन रही हैं बैक्सरी हीथ में, राजेंद्र राज जी आपका भी शुक्रिया। भाई अब गठरी बांधते हैं और कहते हैं कि शाम होने को है, माहौल बनाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। दामने यार की जीनत न बने हर आंसू, अपनी पलकों के लिए कुछ तो बचाए रखिए। कौन जाने कि वो किस राह गुजर से गुजरे, हर राह गुजर को फूलों से सजाए रखिए। इजाजत दीजिए, हैव अ सुपर्ब डे एंड बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा।

0: वाह वाह वाह वाह वाह, डफली वाले डफली बजा और पहला गाना भी धमाल कर दिया। वेलकम टू गोल्ड आफ्टरनून्स विद मी बाली ब्रह्मभट, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड laikagold.com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप। एंड आज का दिन जो है, विच इज The 202nd day of 2026, 163 days left, and we are remembering none other than Anand Bakshi. Anand Bakshi ka asli naam Bakshi Anand Prakash Vaid. He wanted to sing, but became a great writer. Inko describe kiya tha inki. पूरी कहानी सुनने के बाद और गाने सुनने के बाद महेश भट्ट जी ने कहा, आनंद बख्शी अ स्टेडी फ्लेम विद अ साउंड माइंड, यस अ स्टेडी फ्लेम विद अ साउंड माइंड, हिज एबिलिटी टू ट्रांसलेट और एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस इनटू सिंपल रिलेटेबल वोकैबुलरी, दैट वाज हिज स्पेशलिटी। स्पेशलिटी मतलब मजबूरी कहो तो भी चले, क्योंकि उन्होंने अपने आप कहा था, उन्होंने यही कहा था कि मैं 8 चौपड़ी पढ़ा हूं, मेरी वोकैबुलरी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं क्यों अच्छा लिख पाया, बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, मेरे जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से मैं इतना अच्छा लिख सका। What were his experiences? Okay, वो कहाँ जन्मे थे और कौन सी उम्र में उनका इंतकाल हो गया, ये सब तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इनके एक्सपीरियंसिस क्या थे जिसकी वजह से ये इतना दर्द भी कागज पे लिख सकते थे, हंसी मजाक वाले गाने भी लिख सकते थे, पंजाबी का तड़का भी दे सकते थे, जैसे बिंदिया चमकेगी वैसे गाने, ताल से ताल मिला वैसे गाने। तो इनकी कहानी कुछ यूं जाती है कि व्हेन ही वाज बोर्न इन रावलपिंडी ऑन 21st जुलाई 1930, उसके बाद पार्टीशन के बाद जो भी सामान आया वो लेके भागो, यस पार्टीशन के बाद छोड़ना पड़ा वही पिंड जहां पे वो बड़े हुए थे, उनकी सब यादें उनकी फीलिंग सब वहीं थी। रावलपिंडी छोड़ के पार्टीशन के बाद एक डकोटा एयरक्राफ्ट में 2nd ऑफ अक्टूबर को 1947 में वो दिल्ली आए। उम्र क्या थी, सिर्फ 17 साल की, अ 17 ईयर यंग टीनेजर, अराइव्ड इन दिल्ली, फिर वहां से फैमिली के साथ पुणे गए, पुणे से मीरठ आए, मीरठ से वापस दिल्ली आए। आप सोचो आंख बंद करके, अगर आप इनकी जगह में होते, 17 साल का लड़का जो अपनी लाइफ इतनी एंजॉय कर रहा है रावलपिंडी में, वहां गांव में फिल्मी गाने सुनकर अपनी पोएट्री लिखना, ग्रैंडफादर सुपरिंटेंडेंट थे प्रिजन में, फादर भी मैनेजरियल पोजीशन में थे, लेकिन दे वर टोटली अगेंस्ट हिम डूइंग ऑल दिस म्यूजिक बिजनेस एंड राइटिंग एंड ऑल दैट। तो वो रस्ते पे जाके ही यूज टू लिसन टू ऑल दिस फिल्मी सॉन्ग्स, फिल्में देखना और छोटे छोटे पोएट्री लिखना, एंड ही वॉज इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। अब ये सब करते हुए जब पाकिस्तान में थे, तब पाकिस्तान नहीं था, इट वॉज रावलपिंडी में जब थे तभी नेवी में थे, इंडियन नेवी में, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस वो आर्मी में ज्वाइन हुए। आर्मी में जब थे तभी भी वो आर्मी के जितने भी प्रोग्राम्स होते थे वहां पे वो एंटरटेन किया करते थे, अपने गाने सुनाते रहते थे, लेकिन आखिर में उनका जो मन था वही उन्होंने किया, वो बॉम्बे पहुंच गए, और बॉम्बे पहुंचते ही दर बदर ठोकरें खाई, इट वॉज़न्ट ईजी फॉर हिम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गाने लिखने लगे। कौन सा गाना पहला लिखा था कौन सा बाद में लिखा था वो सब बाद की बात है, लेकिन 1962 में एक गाना आया था एक फिल्म थी जहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी, एंड गाना था मेहंदी लगी मेरे हाथ। और उसके बाद 1962 में काला समुंदर में उन्होंने गाना लिखा मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम। फिर 1965 में हिमालय की गोद में, जहाँ पे कल्याण जी आनंद जी थे अगेन, जब जब फूल खिले में भी कल्याण जी आनंद जी थे। इनकी जब दोस्ती हुई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, वहां से इतने गाने लिखे। सोचो तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को 7 अवार्ड मिले, फिल्म फेयर अवार्ड्स, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, उसमें से 6 गाने तो आनंद बख्शी के ही लिखे हुए थे। सिर्फ दोस्ती फिल्म के गाने मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे थे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अवार्ड मिला। लेकिन उसके बाद जितने भी थे, मिलन फिल्म, सावन का महीना, जीने की राह, आप मुझे अच्छे लगने लगे, 1978 में अमर अकबर एंथनी, पर्दा है पर्दा, 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम, 1980 में डफली वाले फिल्म सरगम, और 1981 में कर्ज। तो ये सब जो गाने इन्होंने लिखे और विन किए, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोग इनकी निंदा करते थे। क्या निंदा करते थे? 41 नॉमिनेशंस और 4 अवार्ड्स इनको मिले थे। 5वां अवार्ड जो था आईफा अवार्ड्स में, लेकिन फिल्म फेयर के 4 अवार्ड्स उनको मिले थे। और 41 ही होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस। वो जब नॉमिनेशंस मिले तो सामने कौन खड़े थे जो जीतते थे, उसके बारे में हम बात करेंगे इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आवर। वी एट लाइक अ गोल्ड इन गोल्ड आफ्टरनून्स, स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन, जैमिन फूड्स। वी आर गिविंग अ ट्रिब्यूट टू आनंद बख्शी जी ऑन हिज 106th बर्थ एनिवर्सरी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you 128.9. 128.7 is just changed. 128.7 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Jaimin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre to company turn this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
6: Location, location, location.
7: In real estate,
6: date, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
7: high appreciation
6: in Dubai.
8: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
11: Punjab the biggest tunes. No.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ji haan, aapne wo gana suna jo maine earlier mention kiya tha aur wo tha mehndi lagi mere haath re. Abhi inke चार गाने जो इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स विन किए थे वो थे आदमी मुसाफिर है फ्रॉम अपनापन, दैट वाज 1978, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, तेरे मेरे बीच में वो एक दूजे के लिए अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एंड ही वन द अवार्ड फॉर दैट वन, तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1996 का गाना जो जतिन ललित के संगीत के साथ था, उसमें भी आई मीन दैट इज मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बॉलीवुड एंथम यू कैन से वर्ल्ड वाइड. एंड दूसरा है फिल्म ताल, 1999 की फिल्म, और साल 2000 में उनको अवार्ड मिला विद द सूफी रोमांस फिलोसॉफिकल गाना इश्क बिना, कंपोजर थे A.R. रहमान. तो ये चार अवार्ड्स उनको जो मिले थे फिल्म फेयर अवार्ड्स में, लेकिन 41 नॉमिनेशंस, ये 41 नॉमिनेशंस में कौन से गाने थे जो एकदम बेहतरीन गाने थे लेकिन नॉमिनेशन मिले थे? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो राइटर्स जिसके सामने ये नॉमिनेशंस आए थे उनके बारे में मैं बात करता हूँ. जैसे कि राइट इन द 1960s शकील बादायूनी वॉज रूलिंग द रूस्टर. शकील बादायूनी के जो गाने थे उनका हैवी उर्दू में अल्फाज लिखना, नोबडी कुड मैच दैट वन. एंड इन्होंने तीन कंजेक्यूटिव फिल्म्स में जीता था, थ्री फिल्म्स कंटिन्यूसली उन्होंने जो जीते थे शकील बादायूनी ने. That was 1961 में कौन सा गाना था, चौदहवीं का चांद, सुपर डुपर हिट ऑफ द फिल्म चौदहवीं का चांद. एंड हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं फिल्म घराना 1962, थ्री कंजेक्यूटिव अवार्ड्स इन थ्री ईयर्स. एंड कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बाद का 1963 में. सो ही was not recognized at that time. I mean, I'm talking about Anand Bakshi. In those years, Anand Bakshi ji ke gaane itne sarahe nahi jaate the. Lekin jab Shakil Badayuni ji ki tabiyat thodi nasaaz hone lagi in the late 60s aur 70 mein wo jab guzar gaye, to jo naye writers jo jitne aa gaye the वो सब मार्केट में आ गए, लेकिन आनंद बख्शी स्टार्टेड रूलिंग. आनंद बख्शी जी ने, इनकी जो अदाकारी थी, जो एबिलिटी टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस इनटू सिंपल रिलेटेबल वोकैबुलरी, वो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आ गया, बिकॉज राजेश खन्ना उन दिनों हीरो बन गए एंड ही वॉज द क्रेज. और राजेश खन्ना के गाने लिखकर इन वेरी सिंपल फॉर्म्स लोग पिकनिक में जाते थे तो साथ में गाना गा सकते थे, ऐसी सिंपल लिरिक्स लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस वाली लिरिक्स. अभी मैं आगे जाते हुए आपको बताऊंगा कि जो द डिफीट्स ऑफ आनंद बख्शी अगेंस्ट जावेद अख्तर, अगेंस्ट गुलजार, अगेंस्ट समीर, अगेंस्ट संतोष आनंद, ऐसे कौन से गाने थे जिसके सामने इन राइटरों के गाने जीतते गए और इनको नॉमिनेशंस मिलते गए. आनंद बख्शी जी को हम याद कर रहे हैं वेरी फॉन्डली.
0: मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइकर रेडियो नेटवर्क. दिस इज लाइकर रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like a radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
1: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल्ड 2 ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड Alexa प्ले लाइका गोल्ड 2।
2: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
3: ऑर्डर ऑनलाइन एट poojasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डूज गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
4: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA
3: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
1: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।

ये गाना नॉमिनेट किया गया था और उसके सामने जीते थे संतोष आनंद जी. संतोष आनंद जी ने फिल्म शोर में गाना लिखा, विच वॉज, आपको मालूम ही है, द ग्रेटेस्ट सॉन्ग, एक प्यार का नगमा है. इसलिए आनंद बख्शी जी को अवार्ड नहीं मिला था फॉर दिस सॉन्ग, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. संतोष आनंद जी को फिल्म दोस्त के सामने उन्होंने गाना लिखा था, मैं ना भूलूंगा रोटी कपड़ा और मकान, और चिंगारी कोई भड़के, वो गाने के सामने एक प्यार का नगमा, इन दो गानों में वो हार गए थे अगेंस्ट संतोष आनंद.

0: गाड़ी मुझे भी बुला रही है लेकिन 4 बजे तक मैं नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। थैंक यू निर्मला जी। नेक्स्ट गाना सुनिएगा शालीमार फिल्म का।
1: द Leica रेडियो नेटवर्क इज नाउ ऑल्सो स्ट्रीमिंग लाइव ऑन द नेशन प्लेयर ऐप। डाउनलोड ऑन iOS एंड Android मोबाइल डिवाइसेज।

0: मैं तो एक और दुनिया में हूं अभी, आपको भी पहुंचा दिया उस दुनिया में, है ना। इस आवर में हम फिलोसॉफिकल गाने आनंद बख्शी जी के सुनाएंगे आपको, लेकिन एक बात पे मैं गौर करना चाहता था और आपको भी पॉइंट आउट करना चाहता था। कोई भी राइटर ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में जिन्होंने बाप के साथ काम किया और बेटे के साथ भी काम किया। जी हाँ, दो दो जनरेशंस तक। जैसे आनंद बख्शी जी ने रोशन जी के लिए काम किया तो उनके बेटे राजेश रोशन के साथ भी काम किया। एस डी बर्मन के साथ काम किया तो बेटे आर डी बर्मन के साथ भी काम किया। चित्रगुप्त के साथ काम किया तो उनके बेटों आनंद और मिलिंद, दोनों बेटों के साथ काम किया, आनंद मिलिंद के साथ। कल्याण जी आनंद जी के साथ काम किया तो कल्याण जी के बेटे विजू शाह के साथ भी काम किया। नदीम श्रवण के साथ जब काम किया तो श्रवण जी के बेटे संजीव दर्शन, दोनों बेटे, उनके साथ भी इन्होंने काम किया। सो लुक एट दी होल वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स एंड द एज फैक्टर ऑफ ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनके साथ आनंद बख्शी जी ने इतनी बेहतरीन अदा से काम किया। अब देखते हैं कौन से राइटर्स के सामने वो जीत नहीं पाए थे। जैसे कि एक लेट करियर कॉम्पेटिटर जो थे, दैट वॉज आफ्टर शकील बदायूनी, लेट करियर कॉम्पेटिटर में जावेद अख्तर जी का नाम आता है जिनकी पोएटिक डेप्थ इज अनमैचेबल। बड़ी गहरी बातें करते हैं और सोच भी इतनी गहरी। सो जावेद अख्तर जी के सामने आनंद बख्शी जी ने कौन से गानों में वो जीत नहीं पाए। जैसे कि 1998 का साल था और आनंद बख्शी जी ने गाने लिखे दिल तो पागल है, वो सारे गाने इन्होंने जब लिखे, और फिल्म परदेश के गाने, सुभाष गई की फिल्म, आज भी वो गाने कितने सुनाई देते हैं। लेकिन उसके सामने एक ही गाना फिल्म बॉर्डर का, संदेशे आते हैं, जहां पे जावेद अख्तर जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर 2002 में गदर फिल्म में आनंद बख्शी जी ने गाना लिखा था उड़ जा काले कवा, तो सामने एक गाना खड़ा हुआ फिल्म लगान का, राधा कैसे ना जले, और वापस जावेद अख्तर जी ने फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया। गुलजार साहब ही रोट एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स उर्दू एंड हिंदी, क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, उर्दू एंड कॉम्प्लेक्स उर्दू और हिंदी इमेजरी में लिखने वाले गुलजार साहब के सामने आनंद बख्शी की सिंपल एंड कोलोक्वियल लैंग्वेज फॉर द मासेस, ये दोनों कंपटीशन में थे। 1981 में 4 out of 5 nominations ऑफ आनंद बख्शी फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 1981, चार गाने 5 नॉमिनेशन में से, चार गाने तो आनंद बख्शी की ही थे, 80% उनका ही चांस था जीतने का। फिल्म्स थी कर्ज और आशा, कर्ज के गाने आपको तो सब मालूम ही है, एंड आशा फिल्म के शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, सारे गाने हिट थे। लेकिन जीते कौन? गुलजार साहब। इन्होंने गाना लिखा आन मिलो सजना फ्रॉम द फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, उसके लिए उनको अवार्ड मिला। 1992 में वापस दोनों भिड़े, लम्हे में एक श्योर शॉट गाना, कभी मैं कहूं, लम्हे का गाना जो हरिहरन जी और लता मंगेशकर जी ने गाया, दैट वॉज अ श्योर शॉट टू विन इन द फिल्म फेयर अवार्ड्स। लेकिन जीता किसने? गुलजार साहब ने। अच्छा गाना था, वाह क्या गाना था। फिल्म थी लेकिन, और गाने के बोल थे यारा सिली सिली समझ गए ना। फिर समीर जी के सामने कंपटीशन हुई 1991 में नजर के सामने, फिल्म आशिकी का गाना, उसमें इनको अवार्ड मिलने वाले थे, लेकिन समीर जी को उसी फिल्म में एक ट्रैक के लिए समीर जी को अवार्ड मिला। 1994 में खलनायक में आनंद बख्शी जी ने क्या कमाल कर दिया, चोली के पीछे हर एक स्टेशन पे, हर एक टेलीविजन पे, हर एक रिक्शा में वही गाना बजता था, हर एक नाइट क्लब में वही गाना बजता था। लेकिन कौन सा गाना जीत गया? हम हैं राही प्यार के, जो समीर जी ने लिखा था घूंघट की आड़ से। जी हाँ, सो संतोष आनंद, जावेद अख्तर, गुलजार साहब, समीर, ये कंपटीशन में थे आनंद बख्शी के। लेकिन आनंद बख्शी जी के गाने आज भी सुनाई देते हैं। जो भी गाना मैं कहूं, प्रेमनगर का, आपकी कसम के गाने, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इनके बेटे से मेरा काफी संपर्क होता है, राकेश आनंद जी के साथ, और उन्होंने एक किताब लिखी है जो मैं काफी पढ़ता रहता हूं। राकेश आनंद जिन्होंने इनके पिताजी के लिए किताब लिखी, नगमे किस्से बातें यादें ऑफ आनंद बख्शी, बड़ी सक्सेसफुल किताब है। एंड आप भी ले सकते हैं ये किताब, इट्स अवेलेबल ऑन Amazon। मैं सेल्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आनंद बख्शी जी के बारे में जानकारी करनी हो तो मैं 3 घंटे में सब कुछ नहीं बता सकता। बट इन्होंने कंफर्म किया था कि 645 फिल्म्स में 3901 ट्रैक्स एंड 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 आईफा अवार्ड, 41 नॉमिनेशंस, वो थे आनंद बख्शी जी, इनका रिकॉर्ड। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द ट्रिब्यूट, लेट्स लिसन टू हिज सॉन्ग्स नाउ। मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन Like a Gold with Gold Afternoons, sponsored by Jamin Foods.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.7 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jamin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jamin Foods, the authentic taste of India.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash and Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, 7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just 3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, 24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, 10.99. And Falcon Paneer Box 8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for 1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for 3.99. Mido Yogurt 10 kg, 8.99. Karela or Long Dudi 2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Lister LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Lister LE5 4UN.
4: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turn this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. Click Rifko Theatre for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
5: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
3: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
7: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
3: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
7: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
3: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
7: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
3: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
2: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chicky, Pot Meals and much more.
1: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
3: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
3: Lester Miller is back.
5: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
3: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
3: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.
6: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
4: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
7: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: फिल्म है अपनापन, क्या गाना लिखा और क्या गाया रफी साहब और लता मंगेशकर जी ने।
1: Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
0: Like I told you about Anurodh film, जिसमें वर्ड आता है तड़प, मेरे दिल ने तड़प के।

0: वाह, मैं एक ही बात कहना चाहता था कि एक सीक्रेट होती है बिटवीन म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड राइटर्स. कभी कभी क्या होता है कि राइटर्स अपनी ट्यून बना के म्यूजिक डायरेक्टर को देते हैं, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर्स को अच्छा नहीं लगता कि ये बात पब्लिसाइज हो. और आनंद बख्शी जी वॉज वेरी हैप्पी विद द थॉट कि अगर उन्होंने कुछ ट्यून दी हो म्यूजिक डायरेक्टर को और उन्होंने अपनाई हो और उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके, इन्होंने थोड़ा सा एनहेंस करके उसको सजा के गाने को और उसमें संगीत डाला हो. ही डिड माइंड, ही डिड नॉट वॉन्ट इट डिक्लेयर्ड के ये भी लिखना के लिरिक्स बाय आनंद बख्शी एंड कंपोजिशन बाय आनंद बख्शी. कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू जस्ट राइट द सॉन्ग. अभी रीज़न क्या था कि वो गाने गा सकते थे और ट्यून बना सकते थे, बिकॉज ही हैड कम इनटू द इंडस्ट्री टू बिकम ए प्लेबैक सिंगर. वो प्लेबैक सिंगर बनने के लिए आए थे, लेकिन फिर ही स्टार्टेड राइटिंग एंड ही वॉज मोर सक्सेसफुल. जब उन्होंने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर जो सिंगर्स हैं, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी, इन सबको देखकर उन्होंने सोच लिया कि नहीं, इधर मेरा चांस नहीं लगने वाला. क्योंकि उन्होंने दो चार गाने गाए तो हैं, इवन लता जी के साथ इन्होंने गाना गाया था, मोम की गुड़िया में, बागों में बहार आई, सैंग विद वेरी गुड फीलिंग्स. लेकिन वो बात नहीं बनती जो ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर में थी. तो मैं ढूंढ रहा था सपनों में, वो भी एक गाना था, एक सोलो. फिर शोले में चांद सा कोई चेहरा, इट वॉज अ कवाली विद मन्ना दे, किशोर कुमार एंड भूपिंदर जी, एंड इट्स ओनली ऑन द वाइनल. ये कवाली जो है उसमें भी उन्होंने गाया था. महाचोर 1976, चरस फिल्म में इन्होंने गाया था, फिर बाली का बद्दू, इन सब में इन्होंने कुछ अपनी आवाज़ दी थी. लेकिन मैं तो विटनेस हूँ, जब मैं आनंद राज आनंद के भाई हैरी आनंद की शादी में मैं गया था दिल्ली में, तो वहाँ पे रिसेप्शन में इन्होंने मतलब माइक लिया और कहा कि मैं एक गाना सुनाता हूँ. मैंने भी सुनाया था, सबने सब एक के बारी बारी आते थे, तो सबने गुजारिश की कि आनंद जी आप तो सिंगर हो, आप भी एक गाना सुना दो. तो उन्होंने माइक लिया, बोलते मेरा लेटेस्ट गाना मैं जो अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ वो आपको सुना देता हूँ, आप बताइएगा हिट है या नहीं. तो उन्होंने गाना गाया और सब लोग बड़ा नाचे और कहा कि ये गाना हिट है. और गाने के बोल थे, मैं निकला गड्डी लेके, वही गाना, मैं निकला गड्डी लेके, इतनी सिंपल लिरिक्स, बट इन्होंने ट्यून बनाई थी और इन्होंने ट्यून बना के सजा के दी हुई थी और ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया. तो ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो या आरडी बर्मन हो, उनकी म्यूजिक रूम्स में बैठकर इन्होंने कितनी ट्यून्स बना के भी दी हुई थी रफली, बट ही नेवर टुक क्रेडिट फॉर इट. सो आई थॉट आई विल शेयर दैट बिट. एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही वाज सो सक्सेसफुल, ही वाज अ वेरी गुड लिसनर, क्योंकि वो बैठ के म्यूजिक जो नॉट म्यूजिक डायरेक्टर बट डायरेक्टर जो होते थे फिल्म के, उनसे वो नरेशन दो तीन बार सुनते थे फिल्म की कहानी, और सवाल इतने सारे पूछते थे, सिचुएशंस पूछते थे, ये गाने का सिचुएशन कैसा है, और फिर वो सिचुएशन को एकदम एब्जॉर्ब करके वो गाने बनाते थे, घर जाके लिख के वापस लाते थे. और गाना तीन अंतरे का हो या दो अंतरे का, वो छः छः आठ आठ अंतरे लिख कर लाते थे, बोलते इसमें से चुन लो, और अगर वो नहीं जचा तो वहाँ खड़े खड़े ही वुड राइट इट इन उर्दू, ही वुड राइट द लिरिक्स, बना के एकदम दे देते थे स्पॉन्टेनियसली. नाउ दैट इज़ व्हाट यू कॉल अ गॉड सेंट लिरिक राइटर. तो आगे जाते हुए, वी गॉट ए कॉम्पिटिशन कमिंग. यस, आर यू रेडी? ओके, हियर गोज.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन.
0: Okay, the competition is Laika Radio Network teams up with Sifat Events and Soli Jam. Sifat Events and Soli Jam London for a night of divine soulful music with Prince of Ghazals Ranjit Rajwada. Remember, Ranjit Rajwada had come to our studio and we did a beautiful interview, and Anisa Nasar ji ne YouTube pe Laika YouTube pe unka interview bhi kiya tha, and the show is also going to be anchored by Anisa Nasar ji. It takes place at Harrow Arts Center on Thursday, 30th of July at 7 p.m. What you have to do is send in the word ghazal. Yes, send in the word ghazal and your email ID, your full name and telephone number. Full name, telephone number, email ID and the word ghazal. Yes, G-H-A-Z-A-L, G-H-A-Z-A-L, the word ghazal, and 07-424-232-3233 pe aap information bhejiyega. And if you don't win, don't worry, you can purchase the tickets from harrowarts.com. Tickets are priced from £25. Use the code Laika Radio to get 10% off your tickets online. Ji haan. So, £2.5 bach sakta hai agar aap you go online and use the code Laika Radio to get the 10% off your tickets online at harrowarts.com. Winner's tickets will be emailed across, so please provide valid email address. Okay, name, telephone number, email ID and the word ghazal. TNCs apply. Okay, the show is on Thursday, 30th of July at 7 p.m. at Harrow Arts Center. It's soulful music with the Prince of Ghazals, Ranjit Rajwada. Good luck.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 128.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Laika Radio.
2: You're listening to Bali Brahmbhatt in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor. Playback singer Amantrika. Or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: After the smash hit run in 2020, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
8: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham. Kingdom, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
7: Click riffgotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Start

0: फिल्म है बेमिसाल 1982 की, क्या गाना गाया ना, एंड द म्यूजिकल ट्रीटमेंट, वाओ।
1: एक रोज मैं तड़पूंगा।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: आज दो मिस्टेक्स मेरे से हुई, और एक तो वो तड़प तड़प वाला गाना जो मैंने केके का आपको सुना दिया, एंड ऑफ कोर्स आनंद बख्शी का नहीं लिखा हुआ था, एंड दूसरा गाना था सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने जो गाना लिखा था वो मुकेश जी का आखिरी गाना जो था, दैट वाज चंचल शीतल निर्मल कोमल, वो इरादा था सुनाने का, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम डाल दिया, विच वॉज नॉट रिटन बाय हिम, इट वॉज रिटन बाय पंडित नरेंद्र शर्मा, लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू तो थी, नो डाउट अबाउट इट। यह सो आपको गाना मजा आया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन गुस्ताखी माफ, ये बोलना जरूरी है, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट माई मिस्टेक्स, मैं क्लियरली रेडियो पे बोल भी देता हूँ, क्योंकि उम्र का तकाजा है एक्चुअली।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.338, Indian rupees 128.87, Pakistani rupees 371.73, Afghanis 89.50, Kenyan shillings 172.99, and US dollars, Mauritian rupees 63.21.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £97.81 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. L-Y-C-A. This is Leica. Traffic and travel.
5: I'm Samantha Dean. The M5 Link Road southbound, there's a lane closed, queuing traffic due to a broken down lorry from the M6 at Junction 8 South Carriageway. The M5 northbound delays at the M6 at Junction 8, adding around 30 minutes to your journey. In Leicester, the A594 Southgate's underpass is closed due to a sinkhole between Grosvenor Casino and De Montfort University. The M1 southbound, one lane's closed due to emergency repairs and roadworks at the M1 Leicester Forest East services. At Burton, the A5121 Derby Road northbound's closed due to roadworks from Horninglow Street to the B5018 Hawkins Lane.
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. The Leica Radio Network is now also streaming live on the Nation Player app. Download on iOS and Android mobile devices.
6: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Leica Radio.
7: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert.
8: Bali Brambert.
7: Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
9: Lister, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Lela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN.
10: City
8: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
11: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
13: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
12: Siddhayu, Ayurved that fits your life.
14: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
15: Lester Miller is back.
16: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
15: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
16: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
15: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
16: Arts Council England.
15: Lester Miller is back.
16: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
15: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy, and a proper celebration at the Abbey Park.
16: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
15: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
16: Arts Council England.
2: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations.
17: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: से निराला।
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू। New hits on Laika Radio.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी।
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Breaker Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्ट.
3: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the time. Check my phone. Why do I need to take my...
4: Hey, boy!
5: Coast Guard, we're stuck.
6: Okay, help's on its way.
5: Hold on, mate.
7: Shoes tied. Phone.
8: Back before dark, love. Okay.
9: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.